0: सबै राम्रो सधैँ हाम्रो रेडियो संखुवा सभा 95.5 मेगाहर्ज सधैँ सुन्नुहोला।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले शान्ति सम्झौता खारेज गरेसँगै इरानमाथि बमबारी शुरू, इरानद्वारा आक्रमणको निन्दा। र विश्वकप फुटबलमा क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा, नकआउट चरणमा अप्रत्याशित नतिजा पछि केही ठूला टीमलाई धक्का।

0: जो नेपालले पहिलका बेर ग्याल्बलम प्रविधिसे बनल आल्मोनियम कोटेड सादा और रंगीन जस्ता पाता गुला जुरा कलर और से तीन गुणा बेसी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक आ टिकाउ है छे
1: तीन गुणा बेसी टिके छे
0: हुला छे त और कथिले खोज्दै।

देउराली को भंजानी माकुरी बसुला बर्फी बल को छहारी मा प्रीति गसुला कंसु तिमीलाई डोली मा चढ़ा।

0: अपनी फेरे आवेर बन मेरी प्यारी बुढ़ी मेरी उम्र जुन्किरी बिचारा अले सम मले बात करेगी बसी दोले मो बजे कुत्तो खत्म करे किलो हजार दोहर बाते रहे कुत्तो मले ये ला अब बच्ची मेरी बुढ़ी
1: बुढ़ी बनने रिश्ते
0: ओ डाले I love love I love you my सातो पुत्र fly after see you ये ला तले देखरे सातो

विश्वास माया विश्वास नाट विश्वास जिंदगी जब टूट विश्वास छुट नाट अनुभव।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा